0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजाज मोटरसाइकल को अपग्रेड में पाउनुहोस् अनबीटेबल कैश डिस्काउंट अनि अनबीटेबल एक्स्ट्रा वैल्युएशन सजिलो 36 महीना को ईएमआई मा र साथै फ्री एक्सेसरीजहरु पनि उपलब्ध छ।
1: मेला हुने मिति र स्थान यही भाद्र 7 गते देखि 12 गते सम्म बेसी शहर 7 त्रिवेणी टोल एसबीआई बैंक को आडैमा बजाज शोरूम को अगाडि।
2: आयोजक स्मार्ट अटो ट्रेड बजाज शोरूम बेसी शहर लमजुङ। विस्तृत जानकारी को लागि सम्पर्क 9816728852 9664531331 र 9460969956।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो घर?
0: ठिक छु। हजुर,
1: मलाई साह्रै तिमी याद आउँछ साइली।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी